your body, mind, and soul. आइए आपका स्वागत है हर संसार में और जुड़िए आत्मा परमात्मा केंद्र दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।

सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ग्रैंड में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5530 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

इस बार शब्द बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।

सप्ताश्वनाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा पतिं पातु सवितुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्तान्दौ गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम्

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। और आपके लिए ये जो वीकेंड है, बहुत ही प्यारा सा मौसम है और रक्षा बंधन का त्योहार सभी भाई बहन मना रहे हैं। सभी बहनों भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह भाई बहनों का प्यार दुनिया में बना रहे और उन्हें हमेशा खुशियां मिलती रहें, बस यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम का संसार। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। तो आप उनके जो राखी स्पेशल है, इस महीने की स्पेशल है, वीकली स्पेशल है, आप और फिर अपने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हो। जी हाँ, तो नंबर है आपके लिए 905-799-0045। अगर आपने घर नया खरीदा है, बेसमेंट बनाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया डील्स मिलेंगी, बढ़िया प्राइस पे, बढ़िया क्वालिटी। अब अगर आपने मूव होना है तो आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए। जी हाँ, तो एचके मूवर्स आपके लिए मौजूद हैं, आपके लिए ब्रैम्पटन में मौजूद हैं, तो आप आज ही उनको कॉल कीजिए। कनाडा भर में मूव होने की आपकी मदद करते हैं और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए मूव होने के लिए और कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने के लिए। अगर आप लंदन में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलिजन डिपो अब आपके लिए गोर रोड पे खुल चुका है। आप वहां पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना के दे देते हैं, तो बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो आप mastercollisiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी लीजिए। लंदन में गोर रोड पे मौजूद है आपके लिए मास्टर कलिजन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी हैमिल्टन में रहते हो, गाड़ी ट्यून अप करवानी है, विंड ड्राइव करवानी है, उबर टैक्सी आपने सर्टिफाई करवानी है, तो आपकी मदद करते हैं योगीज ऑटो सेंटर वाले। उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं, तो आपकी कोई भी अथॉरिटीज करवानी है, कोई सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपकी पूरी मदद करते हैं। जी आप मिस्टर गिल को कॉल कीजिए 905-547-6464। तो योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन में डाउन टाउन में मौजूद है। तो आपके विंटराइज करवानी है, कार ऑयल चेंज करवाना है, सर्टिफिकेशन करवानी है, तो हर तरह से आपकी मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए योगी ऑटो सेंटर वाले। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। कुमार के ऊपर फिल्म आया जाती है ब्यूटी आंटी फिल्म।

0: दरिया ऊपर चांदनी आई कंबल कंबल, दरिया ऊपर चांदनी आई कंबल कंबल,
1: इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल।
0: एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे, ना करना इनका
1: क्या
0: आता है सजनी ले।

0: ले चलो नदिया के पास।
1: जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाना जरूर पसंद आया होगा। तो जो पुराने गाने थे उनका अपना ही मजा है, तो दिल एकदम खुश हो जाता है, खास करके जब सैटरडे की इवनिंग होती है और रक्षाबंधन का दिन होता है, तो कुछ इस तरह की फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट आपको एडवांस चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसा आउटडोर फर्नीचर चाहिए, घर में बढ़िया फर्नीचर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया प्राइस पे, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है, और उनकी लोकेशंस आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाक में है। तो और जानकारी के लिए, उनकी स्पेशल मंथली वीकली देखने के लिए topchoiceelectronic.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। तो अब अगर आप लंदन में रहते हैं, आपकी बड़ी खुशी की खबर है लंदन ओंटारियो में, तो मास्टर कोलिजन डिपो वाले आपके लिए वो रोड पे खुल चुके हैं, वहाँ पे आपकी कार वैन ट्रक का कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए, masterkollisiondepo.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, उनकी लोकेशन गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। तो अब अगर आप मूव होना चाहते हैं, मूविंग के लिए आप कॉल कीजिएगा। जी हाँ, तो आपको कॉल करना होगा 416-524-7704, 416-524-6704। कनाडा भर में आपको मूव होने में पूरी मदद करते हैं, और फिर आपके लिए जब भी आपको मूव होना है तो बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचा देती हैं। तो 416-524-7704, 416-524-6704। तो आज राखी के लिए अगर आपको मिठाइयां चाहिए, खाना लाइव कुकिंग करवाना चाहते हो, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, न्यूली रेनोवेटेड है, वहाँ पे जाके भी आप खा सकते हैं। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703-905-814-1730। तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट वाले। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी है, तो आप बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे जाइए, 905-625-0055, 905-625-0055, 1715 मौजूद है आपकी सेवा के लिए। तो अब अगर आपने ऑटो रिपेयर करवानी है, आपको उबर की सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपके लिए योगी ऑटो रिपेयर 1952 किंग स्ट्रीट पे इस पे मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। और जानकारी के लिए 905-547-6464। तो आइए, ये गाना भी आपके लिए बड़ा सुंदर गाना है, नरगिस और राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया था, जब एक चोरी चोरी फिल्म में बहुत ही

0: ये जो गाना है, अगर आप उनकी आपस में जो एक्शंस, आंखों के बॉडी लैंग्वेज आप अगर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो दोनों एक प्रेडिकमेंट में हैं। जैसे कि नरगिस चाहती थी कि मुझसे और गहरा रिलेशन बना लें राज कपूर, लेकिन राज कपूर तो शादीशुदा फैमिली वाले थे, वो ऐसा करने वाले नहीं थे। लेकिन ये जो जिंदगी के फैसले इस तरह के होते हैं कि कभी आदमी भटक जाता है, तो फिर इमोशंस के बेस पे इस तरह के फैसले नहीं किए जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि राज कपूर के अफेयर्स बहुत सारे चले और ही वॉज वेरी रोमांटिक एंड गुड लुकिंग आई थिंक, एंड वुमेन काइंड ऑफ फेल फॉर हिम। बट देन अगेन दिस इज ओनली इमोशंस, मोमेंटरली इमोशंस, इनको पक्का रिलेशन नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो आप भी जिंदगी में अगर कभी ऐसी चीज हो जाती है, बड़ी सक्सेसफुल औरतें थी ये और उनके करियर बहुत बढ़िया थे बॉलीवुड में, तो उनको भी इस तरह की जो चीज उनके अपने फीलिंग्स को कंट्रोल पे नहीं रख सके, और इस तरह से फिर बहुत सारी नाराजगियां हो जाती हैं, बहुत सा दुख दोनों तरफ होता है। फिर जब कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल सकती, हो नहीं सकती है, और बजाय कि दोनों तरफ से हर्ट हो, इससे बेहतर हो जाते हैं कि पहले से ही अपने कदमों को रोक लें। अपने आप पर काबू होना चाहिए अपनी, क्योंकि ये इस तरह के फैसले जब इमोशंस पे किए जाते हैं, मैंने इतनी सारी जिंदगियां यहाँ पे देखी हुई या बिखरी हुई इसी वजह से। क्योंकि अगर औरत स्ट्रांग होती है घर में तो बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, अगर बंदा स्ट्रांग होता है फैमिली में तो औरत कहीं ना कहीं उलझ जाती है, कहीं ना कहीं वो चक्कर चल जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि औरतों का जो होता है चक्कर, वो पूरी जिंदगी में चलता रहता है और कभी पता ही नहीं चलता है। इसी तरह किसी कई बंदों का भी पूरी जिंदगी चक्कर चलते रहते हैं और कभी पता नहीं चलता है। इस तरह की उनकी जो इतने उन्होंने महारत से करते हैं या जो भी कह लो, तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। लेकिन आजकल जो है ना, बड़ा ओपननेस हो गई है, तो लोग ओपननेस में यकीन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब कोई पूरी जिंदगी इस तरह जी ले, फिर अखीर में पता चले तो वो बहुत और भी ज्यादा हर्टफुल होता है कि पूरा जिंदगी जिसको हमने अपना समझा था वो तो अपना है ही नहीं था। तो आइए अब रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं। ये एक बहन भाई का जो एक दिन बना हुआ है, ट्रेडिशन बनी हुई है। तो रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते को मनाने का एक प्रमुख नव भारत इंडिया का जो भारत के ट्रेडिशंस के मुताबिक ये चीज होती है। तो इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र तथा तरक्की की कामना करती है। रक्षा का वचन, भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वचन देता है और उसे उपहार देता है। तो इस तरह से ये जो राखी का त्योहार है मनाया जाता है। अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है, आपको खाना ऑर्डर करना है, क्योंकि वीकेंड में सभी बहन भाई इकट्ठे होते हैं या फिर राखी मनाते हैं, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आपके लिए एकदम फ्रेश सारा कुछ मिलेगा, आपको मिठाइयाँ फ्रेश मिलेंगी, क्योंकि उनकी जो टर्न ओवर है ना बहुत ज्यादा है। वैसे तो जितने भी रेस्टोरेंट है सभी की टर्न ओवर बहुत होती है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा पहले वाले जमाने से अलग हैं कि क्यों इतना झंझट करें, बनाएं बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। बस इस तरह से लोग बाहर से ही खाना खा लेते हैं। तो आपको अगर खाना ऑर्डर करना है
1: दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव।
0: तो आप जरूर समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामना हो रही है। तो अब बहुत सारे मेले हो रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे इवेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे शोज हो रहे हैं। अभी समर का जो एंड आने वाला है, तो इसलिए बच्चे अगले हफ्ते स्कूल वापस चले जाएंगे, तो सभी तरफ से बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर बना हुआ है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, तो एंजॉय कीजिएगा। और फिर मौसम भी, नेचर भी आपका साथ दे रही है कि सभी वृक्षों के रंग बदल जाएंगे, क्या बढ़िया खूबसूरत नज़ारा होगा।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और रक्षाबंधन आपको सभी को, सभी भाई बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को बहुत बढ़िया, आपके लिए भी बहुत बढ़िया हो। सभी बहन को हमारी आपके लिए प्रार्थना है, दुआ है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। हमारे होगा बच्चे है तो स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद साथ मेरे को तो सभी के जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पहली बारी, तो मैं उन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके बच्चे तरक्की करें, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस यही, इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सुवादा भला। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर की साथ। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओम शांति ओम।
1: तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहोगे तो तुमसे क्या कहूँ।

your body, mind, and soul. आइए आपका स्वागत है मौसम साहब में और जुड़िए आत्मा परमात्मा खेल दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।

आपको अपने आप ही चेक करवानी है आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपकी स्पेशल देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-5 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

कर दे करे सवन मैं को आज सुबरे पूरन होए हमारी आशा दूर भजन की रहे के आशा तुम्हें छोड़ कोई अब न जाओ मर जाओ तो तुम के पाओ सेवक सिख हमारी तारी चुन चुन शक्ल हमारी मारी आप बात दे मुझे उपजे काल आकाश निभाए जो सदा हमारे बच्चा सीरस तुझ जो करियो रक्षा आपने हो मोहे राखड़ारी साहिब संत सहाय प्यारे तीन कर्म विश्व के अंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता आज पाए ब्रह्मा वक्त धरा आज पाए शिव जू अवतरा आज पाए कर्म शिव प्रकाशा सत्य काल का

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तो आते इन्ने साला दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन 10 लोकेशंस तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्ब्रम रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135 416-213-1165

इस बार शॉपसर बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश, खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

नमः श्री कुलदेवी स्तोत्रम् नमस्ते श्री कुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदिशक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंध्यं महाघोरं त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं सो

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। और आपके लिए ये जो वीकेंड है बहुत ही प्यारा सा मौसम है और रक्षा बंधन का त्योहार सभी भाई बहन मना रहे हैं। सभी बहनों भाइयों को रक्षा बंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह भाई बहनों का प्यार दुनिया में बना रहे और उन्हें हमेशा खुशियाँ मिलती रहें, बस यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम का संसार। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो आप उनके जो राखी स्पेशल है, इस महीने की स्पेशल है, वीकली स्पेशल है, ये आप और फिर अपने होने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हो। जी हाँ, तो नंबर है आपके लिए 905-799-0045। अगर आपने घर नया खरीदा है, बेसमेंट बनाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया डील मिलेगी, बढ़िया प्राइस पे, बढ़िया क्वालिटी। अब अगर आपने मूव होना है तो आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए। जी हाँ, तो एच के मूवर्स आपके लिए मौजूद हैं, आपके लिए ब्रैम्पटन में मौजूद हैं, तो आप आज ही उनको कॉल कीजिए। कनाडा भर में मूव होने की आपकी मदद करते हैं और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए मूव होने के लिए और कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने के लिए। अगर आप लंदन में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलेक्शन डिपो अब आपके लिए गोर रोड पे खुल चुका है। आप वहां पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना के दे देते हैं, तो बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो आप mastercollisiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी लीजिए। लंदन में गोर रोड पे मौजूद है आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी हैमिल्टन में रहते हो, गाड़ी ट्यून अप करवानी है, विंटराइज करवानी है, उबर टैक्सी आपने सर्टिफाई करवानी है, तो आपकी मदद करते हैं योगीज ऑटो सेंटर वाले। उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं, तो आपकी कोई भी अथॉरिटीज करवानी है, कोई सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपकी पूरी मदद करते हैं। जी आप मिस्टर गिल को कॉल कीजिए 905-547-6464। तो योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन में डाउनटाउन में मौजूद है। तो आपके विंटराइज करवानी है, कार ऑयल चेंज करवाना है, सर्टिफिकेशन करवानी है, तो हर तरह से आपकी मदद करते हैं। तो ये हैं आपके लिए योगी ऑटो सेंटर वाले। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: कुमार के ऊपर फिल्म आया जाती है, आरती फिल्म जी।

0: दरिया ऊपर चांदनी आए संभल संभल दरिया ऊपर चांदनी आए संभल संभल
1: इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल
0: एक बात कहता हूँ तुमसे एक बात कहता हूँ तुमसे ना करना इनका
1: क्या
0: आ तो है सजे।

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाना जरूर पसंद आया होगा। तो जो पुराने गाने थे उनका अपना ही मजा है, तो दिल एकदम खुश हो जाता है, खास करके जब सैटरडे की इवनिंग होती है और रक्षाबंधन का दिन होता है, तो कुछ इस तरह की फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट आपको एडवांस चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसा आउटडोर फर्नीचर चाहिए, घर में बढ़िया फर्नीचर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया प्राइस पे, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है, और उनकी लोकेशंस आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। तो और जानकारी के लिए, उनकी स्पेशल मंथली वीकली देखने के लिए topchoiceelectronic.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 9057990045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। तो अब अगर आप लंदन में रहते हैं, आपकी बड़ी खुशी की खबर है लंदन ओंटारियो में, तो मास्टर कोलिजन डिपो वाले आपके लिए वो रोड पे खुल चुके हैं, वहाँ पे आपकी कार वैन ट्रक का कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए, masterkollisiondepo.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, उनकी लोकेशन गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। तो अब अगर आप मूव होना चाहते हैं, मूविंग के लिए आप कॉल कीजिएगा, जी हाँ, तो आपको कॉल करना होगा 416-524-7604 कनाडा भर में आपको मूव होने में पूरी मदद करते हैं, और फिर आपके लिए जब भी आपको मूव होना है तो बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचा देती हैं। तो 416-524-7604 तो आज राखी के लिए अगर आपको मिठाइयां चाहिए, खाना लाइव कुकिंग करवाना चाहते हो, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट वो ब्रिटानिया पे मौजूद है, न्यूली रेनोवेटेड है, वहाँ पे जाके भी आप खा सकते हैं, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703 905-814-1730। तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट वाले। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी है, तो आप बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे जाइए 905-625-0055 905-625-0055 में मौजूद है आपकी सेवा के लिए। तो आप अगर आपने ऑटो रिपेयर करवानी है, आपको उबर की सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपके लिए योगी ऑटो रिपेयर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट पे मौजूद है, तो आप वहां पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, और जानकारी के लिए 905-547-6464। तो आइए, ये गाना भी आपके लिए बड़ा सुंदर गाना है, नरगिस और राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया था, ये गीत चोरी चोरी फिल्म में, फिल्म के बहुत ही

ये जो गाना है, अगर आप उनकी आपस में जो एक्शंस, आंखों के बॉडी लैंग्वेज आप अगर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो दोनों एक प्रेडिकमेंट में हैं। जैसे कि अर्गे चाहती थी कि उनसे और गहरा रिलेशन बना लें राज कपूर, लेकिन राज कपूर तो शादीशुदा फैमिली वाले थे, वो ऐसा करने वाले नहीं थे। लेकिन ये जो जिंदगी के फैसले इस तरह के होते हैं कि कभी आदमी भटक जाता है, तो फिर इमोशंस के बेस पे इस तरह के फैसले नहीं किए जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि राज कपूर के अफेयर्स बहुत सारे चले और ही वॉज वेरी रोमांटिक एंड गुड लुकिंग आई थिंक, एंड वुमेन काइंड ऑफ फेल फॉर हिम। बट देन अगेन दिस इज ओनली इमोशंस, मोमेंटरली इमोशंस, इनको पक्का रिलेशन नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो आप भी जिंदगी में अगर कभी ऐसी चीज हो जाती है, बड़ी सक्सेसफुल औरतें थी ये और उनके करियर बहुत बढ़िया थे बॉलीवुड में, तो उनको भी इस तरह की जो चीज उनके अपने फीलिंग्स को कंट्रोल पे नहीं रख सके, और इस तरह से फिर बहुत सारी नाराजगियां हो जाती हैं, बहुत सा दुख दोनों तरफ होता है। फिर जब कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल सकती, हो नहीं सकती है, और बजाय कि दोनों तरफ से हर्ट हो, इससे बेहतर हो जाते हैं कि पहले से ही अपने कदमों को रोक लें। अपने आप पर काबू होना चाहिए अपनी, क्योंकि ये इस तरह के फैसले जब इमोशंस पे किए जाते हैं, मैंने इतनी सारी जिंदगियां यहाँ पे देखी हुई या बिखरी हुई इसी वजह से। क्योंकि अगर औरत स्ट्रांग होती है घर में तो बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, अगर बंदा स्ट्रांग होता है फैमिली में तो औरत कहीं ना कहीं उलझ जाती है, कहीं ना कहीं वो चक्कर चल जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि औरतों का जो होता है चक्कर, वो पूरी जिंदगी में चलता रहता है और कभी पता ही नहीं चलता है। इसी तरह किसी कई बंदों का भी पूरी जिंदगी चक्कर चलते रहते हैं और कभी पता नहीं चलता है। इस तरह की उनकी जो इतने उन्होंने महारत से करते हैं या जो भी कह लो, तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। लेकिन आजकल जो है ना, बड़ा ओपननेस हो गई है, तो लोग ओपननेस में यकीन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तो जब कोई पूरी जिंदगी इस तरह जी ले, फिर अखीर में पता चले तो वो बहुत और भी ज्यादा हर्टफुल होता है कि पूरा जिंदगी जिसको हमने अपना समझा था वो तो अपना है ही नहीं था। तो आइए अब रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं। ये एक बहन भाई का जो एक दिन बना हुआ है, ट्रेडिशन बनी हुई है। तो रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते को मनाने का एक प्रमुख नव भारत इंडिया का जो भारत के ट्रेडिशंस के मुताबिक ये चीज होती है। तो इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र तथा तरक्की की कामना करती है। रक्षा का वचन, भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वचन देता है और उसे उपहार देता है। तो इस तरह से ये जो राखी का त्योहार है मनाया जाता है। अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है, आपको खाना ऑर्डर करना है, क्योंकि वीकेंड में सभी बहन भाई इकट्ठे होते हैं, फिर राखी मनाते हैं, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आपके लिए एकदम फ्रेश सारा कुछ मिलेगा, आपको मिठाइयाँ फ्रेश मिलेंगी, क्योंकि उनकी जो टर्नओवर है ना बहुत ज़्यादा है। वैसे तो जितने भी रेस्टोरेंट है सभी की टर्नओवर बहुत होती है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा पहले वाले जमाने से अलग हैं कि क्यों इतना झंझट करें, बनाएं बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। बस इस तरह से लोग बाहर से ही खाना खा लेते हैं। तो आपको अगर खाना ऑर्डर करना है तो आप जरूर समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामना हो रही है। तो अब बहुत सारे मेले हो रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे इवेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे शोज हो रहे हैं। अभी समर का जो एंड आने वाला है, तो इसलिए बच्चे अगले हफ्ते स्कूल वापस चले जाएंगे, तो सभी तरफ से
बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर बना हुआ है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, तो एंजॉय कीजिएगा। और फिर मौसम भी, नेचर भी आपका साथ दे रही है कि सभी वृक्षों के रंग बदल जाएंगे, क्या बढ़िया खूबसूरत नज़ारा होगा।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और रक्षाबंधन आपको सभी को, सभी भाई बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को बहुत बढ़िया, आपके लिए अभी बहुत बढ़िया हो। सभी हमारी आपके लिए प्रार्थना है, दुआ है। आपसे विदा लेती हूँ। हमारे बच्चे वीकेंड है तो स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद 7 सितम्बर को तो सभी के जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पहली बारी, तो मैं उन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके बच्चे तरक्की करें, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस यही, इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी स्वादा भला। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर की साथ। Enjoy this beautiful song. Om Shanti Om.
1: तुमको पाया है तो जैसे खोया हो, कहना चाहोगी तो तुमसे क्या कहूँ।

0: सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
1: प्यार हुंदा फुल्लां तों मनुख सोहणिया,

राग सुही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पह आप विचाई दर्शन हर देखण कैताई कृपा करहे ता सतगुर मिलहै।

तिस पह आप विचारी दर्शन हर दिखन कहताई कृपा करहि ता सतगुर मिलह हर हर नाम त्याई रहा जी सुख देहि तन तुझे आराधी दुख भी तुझे त्याई जे भुख देहि ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन का

नानक विचारा भया दीवाना हर तो दर्शन कहताई चखड़ चागी मीहो वरसै पी गुर देखन जाई समुंद सागर होवै बहुखारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक का होए सेवक वरता कर कर बिनों बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझ त्याई जो तुझ सेवै सो तू है होवै तुझ सेवक पैज रखाई भंडार भरे भक्ति हर तेरे जिस भावै तिस देवाई जिस तो देह सोई जन पाए होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगै नानक विचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागै जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोलै सो थाए पाए मनमुख किस थाए न पाई पाला कक्कर वर्फ वरसै गुरसिख गुर देखन जाई सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेको पाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई रैन दिलस गुर चरण राधी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अगाई नानक का प्रभु पूर रहयो है जत कत तत गोसाई नानक का जियो पिंड

0: राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स, ये सच मुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मंग, उड़े ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकिया निकिया किश्ता। कॉल करो कैनेडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिहा क्यूट जिहा घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुनदे हो।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974008862 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का निघा स्वागत, और जिहड़े दोस्तों ने हुणे ट्यून इन किया जी उन्होंने निघी जी आखदे हां, क्योंकि अपना साथ हर एतवार वाले दिन 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल बन जांदा है। 12 तो 1 रामस पंजाबी ते 1 तो 2 सुणदे हो प्रोग्राम नजरिया। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल। इन्हां प्रोग्राम्स दे दौरान साडे नाल स्टूडियो च गलबात करन वास्ते टैलीफोन नंबर हुंदे ने जी 416-233-7768 जां 8297 4162-33-7368 जां फिर 8297 ते अपनी गलबात हो सकदी हुंदी है। अगर प्रोग्राम तो बाद दे विच 2 बजे तो बाद तुसी मेरे नाल कोई भी गलबात करनी हुंदी है तो फिर 416-666-9-1379 ते कीती जा सकती हुंदी है। 416-669-1379 मेरा परसनल नंबर है, और इस वेले आपां जुड़ चुके हैं जी प्रोग्राम नज़रिया दे नाल, और 2 बजे तक अपना साथ जिहड़ा इस तरह नाल ही बनिया रहेगा। और साडी गलबात दा सिलसिला तुहाडे तक पहुँचाउण दे विच मदद सानू रीमैक्स प्रेजिडेंट रॉयल्टी दे वल्लों मिलदी है। 416-669-1379 ते तुसीं गलबात कर सकते हुंदे हो। कोई भी तुसीं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है जां कमर्शियल है, लीज ते तुसीं देनी आ, लीज ते लैनी आ, वेचनी चाहुंदे हो, खरीदनी चाहुंदे हो, ते साडे नाल संपर्क तुसीं कर सकते हो 416-666-9-1379। सानू एक योगा क्लासेस दे वास्ते स्पेस चाहिए है जी ब्रैम्पटन दे विच, अगर किते भी तुहाडे पास एयरपोर्ट क्वीन दा एरिया जे आपां ला लईए जां गोर रोड तक किते भी किसी भी प्लाजे दे विच कोई भी तुहाडे पास मेन फ्लोर ते होवे तो बहुत जिहड़ा उह एक वधिया होएगा जी। सो उहदे वास्ते जे कोई 300-400 square feet दा तुहाडे पास स्पेस हैगी, अप टू 500 तक भी, 500 square feet तक, ते उहदे लई सानू कॉल कर लियो 416-669-1379 मेरा टैलीफोन नंबर है। तो जेकर तुसी ऑफिस सैकेंड फ्लोर ते लीज ते लेना, प्रोफेशनल ऑफिस कोई अपना सैटअप तुसी करना है तो फिर ड्रू एंड डिक्सी रोड का एरिया 93 Drive ते है, सैकेंड फ्लोर ते है, बहुत शानदार ऑफिस है, खुली जिमें नैचुरल लाइट है जी उस ऑफिस दे विच, और तुसी इंजॉय करोगे। अगर तुसी अपना कोई भी ऑफिस उत्थे प्रोफेशनली कोई भी ऑफिस अपना चलाना है तो उहदे वास्ते सानू लीज ते लैण वास्ते 416-669-1379 ते कॉल तुसी कर लेनी है। उस तो अलावा इंडस्ट्रियल एक यूनिट सानू जरूरत है ब्रैम्पटन जां बोल्टन कैलडन दे विच किते भी, 4,000 square feet दा एरिया होवे, ड्राइव इन डोर दी रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी है, उहनू लीज ते तुसी देना ते तद भी तुसी 416-669-1379 ते कॉल कर लेनी है। एक कोई 6,000 square feet तक दा इंडस्ट्रियल यूनिट जिहदे नाल 8 to 10 ट्रेलर पार्क हो सकते होण किते भी ब्रैम्पटन कैलडन मिल्टन इस एरिए दे विच किते भी तुसी वेचना चाहुंदे हो ते क्वालिफाइड बायर साडे कोल है जी, उहदे लई भी 416-669-1379 ते तुसीं संपर्क कर सकते हो। ऑप्टिकल वन नूं कॉल करनी है 905-455-0752 उहनां दा टैलीफोन नंबर है, 2 locations तों सेवावां दिंदे ने, पंजाबी बाय नेचर 416-937-2061 ते तुसीं उहनां दे नाल गलबात कर सकदे हो। ड्रीम होम अपलायंसिस ते कॉल करन वास्ते टैलीफोन नंबर 905-805-3000 है जी, इस नंबर ते कॉल करके जानकारी लै लेनी है। किंग टोइंग 416-677-2222 ते उहनां दे नाल संपर्क किया जा सकता है। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 टैलीफोन नंबर है, और गिल स्वीट फैक्टरी 905-799-2616 ते संपर्क करके जानकारी तुसी लै सकते हो। ऑल ओवर कैनेडा 6 locations तो सेवावां दिंदे ने, जिन्हां दे विच 4 साडे इत्थे ETH ते 2 locations कैलगरी दे विच ने। कोई भी जानकारी तुसी लैनी होवे gilsweetfactory.com जां फिर 905-799-2616 ते संपर्क करके ले जा सकती हुंदी है। प्रीमियम आटो रिपेयर एंड यूज्ड कार सेल्स तो गुरप्रीत अड्डा जी, 416-747-6803 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2139 ਮਿਲਬਰਕ ਡਰਾਈਵ ਨੌਰਥ ਯੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਟੱਡਾ ਜੀ। 416-747-6800 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ।